0: करूँ माय
1: हाथ में किया है
0: करूँ माय कहीं ये पकड़ूँ माय
2: नवतार
0: पकड़ूँ माय कहीं ये पकड़ूँ माय।